सतगुरु पास। जो सतगुरु सरण संगत नहीं आए, त्रिक जीवे त्रिक जीव वासे। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। रागु जरी महला पंजवा।

चल हम देखा तह डूबी अले मन एक न चित से मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहा ना हूँ जती सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पहया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख देहोरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किता ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरन जाम लाग भव जल तरण कै जन वृथा जात रंग माया कह रहा

कहो सिमट पव शंकर काठा शिगरी सरठ दिखाई अचम पव आदि जुगाद स्वरूप सजम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वर सिख संग हरो दौट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तो जो तब शरण परे तिनके दुष्ट दुख हा मरे पुरख जन पग भरे तिहारे तिनके तुम संकट समुटारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह अह रक्षा हुई ताहि सब काला दुष्ट अरिठ टरंत दकाला।

आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मरवजिया वाह दहिया राग रतन परवार।

तो कथियो कथ कहानी। ये मन चंचलां चतुराई कर न पाया, चतुराई न पाया कनाए तो सुन मन मेरे आए। माया मोहनी जनेत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तना कीती जिन ठगौली पाइया। कुर्बान कीता ते सब टहजन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई कर न पाया।

आकाश ही कुदरत सर्वे आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सर्व प्यार

0: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो,
1: काल कलेश तन मैं मिटावो,
0: सिमरो जास बसम बारिक,
1: नाम जपत अगनत अनेक,
0: वेद प्राण सिमर सदाखर,
1: कीने राम नाम इकाखर,
0: कनका एक जस जीव सावे,
1: बाकी महिमा गनी नावे,
0: कांकी एक दर तुहारो,
1: नाने गुण संग मय उधारो,
0: सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम,
1: भजना के मन विश्राम,
0: राव का सिमरन गर्व न बसे,
1: प्रभ के सिमरन दुख जम न से,
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे,
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन करे,
0: प्रभ सिमरन को भी न लागे,
1: प्रभ के सिमरन अंधिन जागे,
0: प्रभ के सिमरन पाव न व्यापे,
1: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे,
0: प्रभ के सिमरन साध के संग,
1: सर्व निदान आनक हर रंग,
0: प्रभ के सिमरन रज सिद्ध

0: रमैया के गुण चेत पराने,
1: कवन मूल ते कवन दृष्टाने,
0: जेतु सास वार संगारिया,
1: गर्व अगन मैं जिने उबारिया,
0: वार रथा तुझे प्यारे दूध,
1: हर जोबन भोजन सुख सूद,
0: मृद पिया ऊपर साख सहन,
1: मुख प्याओ बैठ को दैन,
0: यो निर्गुण गुण कसु न बूझे,
1: बकस ले तो नानक सीजे,
0: जय बरसात तार ऊपर सुख बसा,
1: सूत प्रात मीत बनता संग हसे,
0: जय बरसात पीवे शीतल जला,
1: सुखदाई पवन पावक अमुला,
0: जय प्रसाद भोगे सब रसा,
1: सगल समगरी संग साथ बसा,
0: दीने हस्त पाव का नेत्र रसना,
1: तिसे त्याग वर संग

0: ज्योत में आने के जन्म
1: नानक राख ले अपन कर कर्म
0: तू ठाकर तुम पहे अरदास
1: सब तेरी रास
0: तुम मात पिता हम बारक तेरे
1: तुमरी कृपा में सुख नेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊंचे ते ऊंचा भगवंत
0: सर सामग्री तुमरे

0: सर पर होवत जान अनेत
1: लड़की साया से रंग लावे
0: ओ से ओ मन पछतावे
1: ज्योति से चालन हार
0: लपट रहे होता है अंध अंधार
1: बटाऊ से लावे जो लावे
0: बटाऊ से जो लावे ने ताको हाथ न आवे के
1: मन हर के नाम की प्री सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप ले लाई
1: मिथ्या तन तन कटम्ब सवाया
0: मिथ्या हमें ममता माया
1: मिथ्या राज जोगन तन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रस अस्ति असव वस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग पाया पे खस्ता
1: मिथ्या त्रो मोह मान
0: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
1: अस्तर पास साध की शरण
0: नानक जप जप जीवे हर के चरण
1: मिथ्या सारमन पर निंदा सुने
0: मिथ्या हस्त पर दरब को ही

0: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
1: ठाकुर को रख मन माए
0: जय प्रसाद संगंदा तन लावा
1: इसको सिमरत परम गत पाए
0: जय प्रसाद बसे संग मंदर
1: इसे ध्याय सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा ध्याय ध्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंब हंडावा
1: इसे ध्या कथा लुभावे
0: जय प्रसाद सुख सुए सुई जय
1: मन आठ पैर ताका जस गा विजय
0: जय प्रसाद तो सबको मन
1: मुक्ता को जस प्रसन्न बखाने
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म
0: राव जी जात दर के मन पावा
1: नानक पासे ती कर जावे
0: जय प्रसाद अरोग कंचन देही
1: लिवला वो तिस राम स्नेही
0: जय प्रसाद तेरा उल्ला रहता
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल सिंदर टाके
1: मन चरणी पर ठाकुर प्रभ ताके
0: जय प्रसाद तुझ को ना पहुंचे
1: मन सास सिमरो प्रभ यूचे
0: जय प्रसाद पाई दिलाव दे
1: नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद अभुगुण परिजय
1: मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय
0: जय प्रसाद आसो हस्त सवारी
1: मन तिस प्रभ को कबु न बिसारी
0: जय प्रसाद बालक मलख तना
1: राग पुरो प्रभ अपने मना
0: जय तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठ सत्य से
0: ते आए जे वे कलख
1: यहाँ वाना में तेरी रख
0: जय प्रसाद करे पुन बहु दान
1: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू चार बिहारी
1: इस प्रभ को सास सितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमरो सदा नूप
0: जय प्रसाद तेरी निकी जात
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत रहे
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे
0: जय प्रसाद सुने कर नाद
1: जय प्रसाद देखे अभिस्माद
0: जय प्रसाद बोले अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहज बसना
0: जय प्रसाद हास कर चले
1: जय प्रसाद संपूर्ण फले
0: जय प्रसाद परम गत पावे
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्राप्त त्याग और कत लागो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो
0: जय प्रसाद तू पार्ट संसार
1: इस प्रभ को मूल न मना विसार
0: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे
1: जय प्रसाद तेरा

0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा नर धोख
1: जैसे सूर सरब को सोख
0: ब्रह्म ज्ञानी के दस समान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल पवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीज एक
1: जो बस्ता को खोदे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक नाओ
1: नानक जो पावक का स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल ना लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी का मन हुए प्रकाश
1: जैसे तर ऊपर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतत समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी सृजन पे
1: नानक जिन प्रभु आप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब म्या
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृश्य अमृत बरसी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के हुए सो भला
1: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल आधार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सकल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी है बुंद त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के का सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिंता
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
0: ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभु आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दास प्रभागी पाइया
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाकर
1: ब्रह्म ज्ञानी ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मैं तो कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सटका करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मौत जोत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।

0: संग
1: मनते बिनसे सगला परम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: सा संग पापा मल खोवे
0: इस भगवती कीमत उत्तम होवे
1: तो अंत की टहल करे नत नीत
0: मंतन अर्पे बिसन परीत
1: हर के चन हृदय उसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन प्रबोध
0: राम नाम तम सोद
1: राम नाम सार रस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: हर की कथा हृदय उसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल
0: सुख मैं जाने स्थूल
1: जो वरना को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: वरना में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: शंका वे जन कोए
1: कर कृपा अंतर और तारे
0: बस प्रेत मुगत पाथर को तारे
1: सर्व रोग का उखर नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काऊ ज्योत कितने न पाइये धर्म
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम
1: जिसके मन आवराम का नाश
0: इसका नाम सत राम दास
1: आदम राम तन नदी आया
0: दाद संतन पाए तिन पाया
1: सदा नेट नेट हर जान
0: सो दास दर गया परवान
1: अपने दास को आप कृपा करे
0: इस दास को सब सो जी परे
1: सगल संग आत्म दास
0: ऐसी जुगत नानक राम दास
1: रब की आगे आत्म तावे
0: जीवन मुख सो कहावे
1: ऐसा हरक तैसा सोग
0: सदा अनंत नहीं बियोग
1: ऐसा स्वर्ण तैसी असमर्ति
0: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी
1: ऐसा मान तैसा मान
0: ऐसा रंग तैसा राजान
1: जो बरताए साई जोग तो
0: नानक पूरक कहिए जीवन मुकत
1: और के सगले ठाओ
0: जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ
1: आपे कर्ण करावन जोग
0: पावे सोई फुन होग
1: पसरे आप होए नंत्रंग
0: रखे न जाए।

0: दास
1: तिन्होवता तम प्रकाश
0: श्री गुर तत् के बेते
1: सदा निहारे को नेत्रे
0: श्री गुर नाम रस पीवे
1: अमर पय सा सद ही जीवे
0: श्री गुर नाम गुण गावे
1: आत्म रस उसै

0: का साजा
1: तबु अकीर्त में आवे
0: तबु पला पला कहावे
1: जो बाब राखे तभी रहे
0: गुर पर सा नानक सच कहे
1: तबु होए पंड करे विखान
0: तबु मोहन तारी लावे ध्यान
1: तबु तट तीर स्नान
0: तबु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: तबु कीट हास पांग होए जिया
0: अनिक जोन पर में परमिया
1: नाना रोजन साकी दिखावे
0: जो प्र पावे तिवे न चावे
1: जो तुर पावे सोई होए
0: नानक दूजा वर्ण कोए
1: तबु सा संग दियो पावे
0: उस स्थान ते बोर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान प्रकाश
0: उस स्थान का नहीं विनाश
1: मन तन नाम रत एक रंग
0: सदा बसे पार ब्रह्म के संग
1: जो जल में जल आए खटाना
0: त्यों ज्योति संग ज्योति।

0: छपदे।
1: संत के दुखन आर जा कटे,
0: संत के दुखन जानते नहीं छुटे।
1: संत के दुखन सुख सब जाए,
0: संत के दुखन नरक में पाए।
1: संत के दुखन मत होए मरीन,
0: संत के दुखन सो बाते हीन।
1: संत के हाथे को रखे ना कोई,
0: संत के दुखन थान प्रष्ट होए।
1: संत कृपाल करे कृपा जे करे,
0: नानक संत सुमिंदक भी तरे।
1: संत के दुखन ते मैं पवे,
0: संतन के दुखन काग जो लगे।
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
0: संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए।
1: संतन के दुखन तिशना में जले,
0: संत के दुखन सब को छले।
1: संत के दुखन ते सब जाए,
0: संत के दुखन नीज ने चाहे।
1: संत दुखी का थाओ को नाहे,
0: नानक संत पावे ता होए भी गत पाए।
1: संत का निंदक मात आई,
0: संत का निंदक किंटिक न पाए।
1: संत का निंदक मात यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा।
1: संत का निंदक राज ते हीन,
0: संत का निंदक दुख यार दीन।
1: संत के निंदक को सदा सर्व रोग,
0: संत के निंदक को सदा बिजोग।
1: संत की निंदा दुख में दुख,
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख।
1: संत का दुखी सदा वेत,
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित।
1: संत के दुखी को डान लागे,
0: संत के दुखी को सब त्यागे।
1: संत का दुखी महाकारी,
0: संत का दुखी सदा भिकारी।
1: संत का दुखी जन्म मरे,
0: संत की दुख ना सुखते टरे।
1: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
0: नानक संत पावे ताले मिलाए।
1: संत का दुखी आज दुबी ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज ना पहुँचे।
1: संत के दुखी को ध्यान भरमाइए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए।
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना निर्थक की लोथा।
1: संत के दुखी की जड़ कुछ ना है,
0: आपन बीज आपे ही खाए।
1: संत के दुखी को अवरण राखन हारो,
0: नानक संत पावे ताले उबार।
1: संत का दुखी अमल लाए,
0: जो जल बिहून मछली तड़पड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पावा की धन नहीं त्रापे।
1: संत का दुखी छुड़े केला,
0: जो बुहार तिल खेत माए देला।
1: संत का दुखी धर्म ते रहे तो,
0: संत का दुखी सद मिथ्या कहत।
1: कहत निंद का तुरी प्या,
0: नानक जो तिस पावे सोई थिया।
1: संत का दुखी बिग रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा है काइया,
0: संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए।
1: संत के दुखी की पूजे ना आशा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा।
1: संत के दुख न चेष्टे कोए,
0: जैसा पावे तैसा कोई होए।
1: या कीर्तना मेटे कोए,
0: नानक जाने सच्चा सोए।
1: सब कर तिसकी हो करने हार,
0: सदा सदा तुझको नमस्कार।
1: सब की हो तो करो दिन रात,
0: जिसे त्यागो सास विरास।
1: सबको वर्ते तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को दिया।
1: अपना खेल आप करने हार,
0: दूसर कौन कहे।

0: टूटी गंडन हर गोपाल
1: सरब जिया पे प्रतपाल
0: सगल की चिंता जिस मन माहे
1: इस ते व्यर्था कोई नाहे
0: प्रेमन मेरे सदा हर जाप
1: अब नासी प्रभे आपे आप
0: अपन किया कछु न होए
1: जे सो प्राणी लोचे कोए
0: इसमें नाही तेरे किस काम
1: कत नानक जपे हर नाम
0: रूप वंत होए नाही मोह
1: रब की जो सगल कट सो है
0: तनवंता होए क्या को गर्व
1: जा सब किस इसका

0: अंदर को थम है थम मन
1: त्यों गुर का शब्द मने अस्थम मन
0: यूपा खान नाव चढ़तर है
1: प्राणी गुर चरण लगत निस्तर है
0: यू अंधकार दीपक प्रगास
1: गुर दर्शन देख मन होए विगास
0: यू ध्यान में मार्ग पावे
1: त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे
0: इन संतन की बादशाह तूर
1: नानक की हर लोचा पूर
0: मन मूर काहे बिललाई है
1: पूरब लिखे का लिखिया पाई है
0: दुख सुख प्रभु देवन हार
1: अवर त्याग तू तिसे जितार
0: जो कुछ करे सो ही सुख मान
1: भूला काहे फिरे अजान
0: कौन भक्त आई तेरे संग
1: लपट रहे हो रस लोभी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पद से ती कर जाए
0: जिस वखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया
0: तब अभिमान लियो मन मोल
1: राम नाम हृदय में तोल
0: लाद खेव संत संग चाल
1: अवर त्याग बिखिया जंजाल
0: तन तन कहे सब कोई
1: मुख जल हर दर गए सोए
0: यो व्यापार बिरला व्यापार है
1: नानक ताके साध बलिहारे
0: चल साध के तोय तोय पियो
1: अरब साध को अपना जियो
0: साध की तूर करो स्नान
1: साध ऊपर जाइए कुर्बान
0: साध सेवा उठ भागी पाई है
1: साध संघर कीर्तन गाइए
0: बिगनते साधु राखे
1: हर गुण गाये अमृत रस चाखे
0: ओट गही संत है दर आया
1: सर्व सुख नानक ते पाया
0: मित्र को जीवालन हार
1: मुखे को देवते आधार
0: सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे
1: पूरब लिखे का लेना पाए
0: सब किस तिस कौ करने जोगा
1: इस बिंदु सर हुआ न

0: पदे
1: अविनाशी ब्रह्म मन मेरा आखा
0: मन की तुम प्रीत्याग
1: इसते परे नाही किस कोई
0: सरब निरंतरे को सोए
1: आपे बिना या पे दाना
0: गहर गंभीर गहीर सुजाना
1: पाल ब्रह्म परमेश्वर गोविंदा
0: कृपा निधान दयाल बख्शंद
1: सातरे की चरनी पाओ
0: नानक के मन ओन राओ
1: मनसा पूर्ण सरना जोगा
0: जो कर पाया सोई होग
1: अन्न बन जाका नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: अंध रूप मंगल सत जाके
0: सर्व तोक सुनिए कर ताके
1: राज में राज जोग में जोगी
0: तप में तपेसर ग्रस्त में भोगी
1: त्याए भक्त है सुख पाया
0: नानक इस पुरख का किने अंत ना पाया
1: जाकी लीला की मित ना है
0: सगल देव हरे अवगाए
1: पिता का जन्म के जान है पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: गुण में जा को परमाए
0: जन्म मरे फिर आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना बेकर एक रंग
1: नाना बित किन्नो विस्तार
0: प्रभ विनाशी एक अंकार
1: नाना चलत करे खिन माहे
0: पूरे ओ पूरन सब ठाए
1: नाना बित कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: सब घट तिसके सब तिसके ठाओ
0: जब जब जीवे नानक हर नाओ
1: नाम के तारे सगले जान

0: सो मीत विसार हो,
1: चरण कमल हृदय में उतारो,
0: कर्ण कान सो प्रभु सम्राट,
1: दिल कर गहो नाम हर वत,
0: यो तन संचो हो भगवंत,
1: संत जना का निर्मल मंत,
0: एक आस राखो मन माहे,
1: सर्व रोग नानक मिट जाए,
0: जिस तन को चार कुंट उठता है,
1: सो तन हर सेवा ते पावे,
0: जिस सुख को नित बाचे मीत,
1: सो सुख साधु संग परीत,
0: जिस शोभा को करे भली करनी,
1: सा शोभा पज हर की सरनी,
0: को पावी रोग न जाए,
1: रोग मिठे हर अवखद लाए,
0: सर्व दान में हर नाम निदान,
1: जब नानक दर गया परवान,
0: मन पर बोध हर के नाए,
1: दिस्तावते आवे ढाए,
0: ताको विघ्न लागे कोई,
1: जाके हृदय बसे हर सोए,
0: कल ताती ठंडा हर नाओ,
1: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
0: गोविंद से पूर्ण हो आस,
1: भगत पाए आत्म पर गास,
0: चितकर जाए बसे अविनाशी,
1: ओ नानक काटी जम फांसी,
0: तत विचार कहे जन साचा,
1: जन्म मरे सो काचो काचा,
0: आवा गौन मिटे प्रभु सेवा,
1: आप त्याग शरण गुरुदेव,
0: रतन जन्म का होए उदार,
1: हर हर सिमर प्राण धार,
0: अनक पावन शूटन हारे,
1: सिमरत शाश्वत वेद विचारे,
0: हर की भक्त करो मन लाए,
1: मन बंचत नानक फल खाए,
0: संग न चालस तेरे तना,
1: क्या लपटावे मूरख मना,
0: सूत मीत कुटुंब अरवंता,
1: इनते कहो तुम कवन सनाता,
0: राज अंग माया विस्तार,
1: इनते कहो कवन छुटकार,
0: आस हस्ती रथ असवारी,
1: झूठा टंब झूठ पासारी,
0: जिन दिए तिस विजय नाम बिगाना,
1: नाम बिसार नानक पछताना,
0: गुर की मातु ले आने,
1: भगत बिना बो डूबे स्याने,
0: हर की भगत करो मन मीत,
1: निर्मल होए तुम्हारो चीत,
0: जन कम रखो मन माहे,
1: जन्म जन्म के खिल बिख जाए,
0: आप जपो अवरह नाम जपाव हो,
1: सुनत कहत रहत गत पावो,
0: सार पूज सत हर को नाओ,
1: सह सुभाय नानक गुण गाओ,
0: गुण गावत तेरी उतरस मैल,
1: बिन जाए हो मैं बिक फैल,
0: होहे अचिंत बसे सुख नाल,
1: सास ग्रास हर नाम समाल,
0: चार स्यान सगली मना,
1: सा संग पावे सतना,
0: हर पूंजी सच करो बिहार,
1: इया सुख दर गया जयकार,
0: सर्म निरंतर एको देख,
1: ओ नानक जाके मस्तक लेख,
0: एको जप एको साला है,
1: एक सिमर एको आए,
0: एक उसके गुण गाओ अनंत,
1: मंथन जाप एक भगवंत,
0: एको एक एक हरा
1: पूरन पूरे ओ प्रभु।

0: विरोध के संग मात
1: जब इसका वरण चैन न जावत
0: हरक सौको किसे भी आपत
1: जब आपन आप पार ब्रह्म
0: तब मो कहां किस होवत परम
1: आपन खेल आप वर्ती जा
0: नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल तनी
0: तब बंद मुकट को किसको गनी
1: जब एक कह हर अगम अपार
0: तब हरक सुरक को कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए
0: तब शिव सकत कहो कि ठाए
1: जब आपे आप अपनी ज्योत तरह
0: तब कवन डर कवन का डर
1: आपन चलत आप कर हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: अब नासी सुख आपन आसन
0: जन्म मरण को कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अव्यक्त अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुपत के पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे

0: स्वरूप जय स्वरूप केवल जगदीश
1: तै छल छिदर लगत को कीस
0: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै
1: तै किसे भूख मन तृप्त आवै
0: करुण करावन करनै हार
1: नानक करते का नहीं सुमार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन मैं बाप मित्र सुत पाई
0: जय सर्व कला आपै परवीन
1: तै वेद कते कहां को चीन
0: जब अपन आप उरतार
1: तो सगन अब सगन कहा बिचारे
0: जह आपन ऊच आपन आप नेरा
1: तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: विस्मन विषम रहे विषमात
1: नानक अपनी गत जानो आप
0: जह अचल अछेद भेद समाया
1: वहाँ किसे व्यापत माया
0: आपस को आप आदेश
1: तै गुण का नाही परवेश
0: जह एक एक एक भगवंता
1: कौन अचिंत किस लागे चिंता
0: जय अपन आप पतियारा
1: कौन कथे कौन सुन।

0: भक्त
1: कौ नरक कौ स्वर्ग बचावत
0: आल जाल माया जंजाल
1: हमे मोह परम पै पार
0: दुख सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार के अवख्यान
0: अपन खेल आप कर देख
1: खेल संकोचे तो नानक के
0: जय अभिगत भगत दयाप
1: जय पसरे पासार संत परताप
0: दुहू पाका आपे तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आपे कौतक करे अनत छोज
1: आपे रास भोग निर्जोग
0: जिस पावे तिस आपन नाय लावे
1: जिस पावे तिस

0: करे।
1: संत संगंतर प्रभु डीठा
0: नाम प्रभु का लागा मीठा।
1: सगल समग्री एकस कठमा है
0: अनेक रंग नाना दृष्टा है।
1: नवनिध अमृत प्रभु का नाम
0: देही मैं इसका विश्राम।
1: सुन संवाद अनत नाद
0: कह न जाए अचरज विस्माद।
1: तिन देखिया जिसे आप दिखाए
0: नानक ते जन सो जी पाए।
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: कट कर व्याप रहा भगवंत।
1: तन माहे आकाश पयाल
0: सर्व लोक पूरन प्रतपाल।
1: मंथन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म।
1: पौन पानी बसंतर माहे
0: चार कुंड दिशे समाए।
1: तिस्ते पैर नहीं कोठाओ
0: गुर प्रसाद नानक सुख पाओ।
1: वेद पुराण सिमृत में देख
0: ससियर सूर नक्षत्र में।

0: का पूरे गुरु का सुने उपदेश
1: पार ब्रह्म निकट कर देख
0: सास सास सिमरो गोविंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित्यागो तरंग
1: संत जना की तूर मन मांग
0: आप छोड़ बेनती करो
1: सा संग अगन सागर करो
0: हर तन के पर ले हो पंडार
1: नानक गुर पूरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: सा संग पज परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चित वो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख पंजन पूरन के